एंजॉय किया आपने ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपकी मूड को रिफ्रेश। रिसर्च ट्रायंगल पार्क यानी RTP अब अपनी पुरानी पहचान से आगे बढ़कर RTP 3.0 की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में यहाँ मिक्स विकास और रेजिडेंशियल एरिया को मंजूरी मिली है। आने वाले दिनों में RTP सिर्फ काम करने की जगह नहीं बल्कि एक शानदार डाउन टाउन की तरह लाइफ और रिक्रिएशन का सेंटर बनने वाला है। मतलब काम उसके साथ एंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट भी आपको मिलने वाला है। मैं क्या ही बताऊँ, जब दो चीज़ों का मेल एक जगह पे होता है तो बात ही कुछ निराली होती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आइए और सारी चीज़ें एक जगह पर ही पाइए, ऐसा सीन देखने अक्सर मिलता है। आपके शाम के क्या प्लान है आप थोड़ा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अगला एक गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का।

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। तो ये थी ट्रायंगल की और हमारे एरिया की आज की कुछ खास खबरें। खबरें काफ़ी बेहतरीन थी एंड अब वक्त हो चला है कि कुछ हम बॉलीवुड की भी गपशप करें। तो स्थानीय खबरें जो है वो ना एक जान रहती है सबकी, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि क्या चल रहा है हमारे एरिया में जानने के लिए। तो ये मेरा जिम्मा है कि मैं आप तक खबरें पहुँचाते रहता हूँ, आपको एंटरटेनमेंट देने का जो जिम्मा है वो भी मैंने ले रखा है। मेरे प्यारे लिसनर्स को एक बार बहुत बहुत थैंक यू रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे इस रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है, टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिलेगा ऐप। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर मात्रा में शोज़। उसके बाद आप एंजॉय भी कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूज़िक, देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रेडियो नायरा सुन सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का, माया नगरी यानी मुंबई एंड बॉलीवुड के बारे में। आइए जानते हैं कुछ खबरें। पहली खबर तो यह है कि यार मुझे लग रहा है कि आवारापन 2 मूवी जो है वो ऐसे ही मैं फेसबुक पे देख लूँगा या सोशल मीडिया पर देख लूँगा। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने सारे क्लिप्स जो है वो वायरल हो रखे हैं आवारापन 2 के। एक सीन तो आपने देखा ही होगा जब इमरान हाशमी सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो पीछे पीछे जा रहे हैं। सो इट्स लाइक इतने सारे सीन्स वायरल हो रहे हैं कि क्या पता पूरी मूवी शायद फेसबुक पे मैं देख ना लूँ। लेकिन ऐसा होना थोड़ी गलत बात है यार, बहुत एफर्ट लगते हैं मूवी बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो कृपया करके इफ इट पॉसिबल आप ये क्लिप वायरल करना बंद कर दें। हाँ, अगर कुछ एंट्री होती है, कुछ होता है तो इट्स फाइन, इमरान हाशमी के फैंस हैं उनको भी लग रहा है इतने सालों के बाद मूवी आ रही है। बट इस सीन के सीन वायरल करना इट्स नॉट गुड, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सीन जो है वायरल नहीं होने चाहिए। सुनते हैं अगला एक गाना एंड एंजॉय करते हैं इस प्यार भरी शाम को।

0: हमारा तो भी वन ऑफ नाइट्स एंजॉय किया आपने गाना एंड बातें हो रही है बॉलीवुड की गलियारों से यानी माया नगरी मुंबई से। मैं कह रहा हूँ कि फिल्म मेकर डेविड धवन अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर एक शानदार पार्टी रखी गई जिसमें सलमान खान, वरुण धवन और सनी देओल जैसे कई बड़े सितारे पहुंचे। मतलब डेविड धवन का जो एक ईरा था जब डेविड धवन मूवीज बनाते थे तो अलग तरह का ही चार्म था। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि सलमान खान तो लाइक डेविड धवन ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अप टू द मार्क लेवल का है। जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और ट्रस्ट मी 75वां जन्मदिन डेविड धवन का है लेकिन उनको देख कर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 75 साल के हुए होंगे। आज भी उनके चेहरे की जो स्माइल है वो बताती है कि यार वो कितने यंग है। भलाई डेविड धवन इट्स लाइक बढ़िया, मतलब बढ़िया मस्त अपने लाइफ में जीते हैं एंड उनको देखकर ये अंदाज़ा भी आप लगा नहीं सकते हैं। तो रेडियो नायरा विश कर रहा है डेविड धवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: All right, see, it hurts.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं ये कह रहा था कि डेविड धवन जितने डाउन टू अर्थ है उतने ही डाउन टू अर्थ वरुण धवन भी है। मतलब डेविड धवन ने जो परवरिश वरुण धवन को दी है एंड जिस तरह से वरुण धवन भी एक वर्सेटाइल एक्टर है, क्या ही बताऊँ। मतलब फादर एंड सन की ये जोड़ी तो काफ़ी कमाल की है। और किसी का बर्थडे है तो करीना कपूर खान ने अपने पति वाओ सैफ अली खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की है एंड फैंस भी सैफ अली खान को बधाइयां दे रहे हैं। वाओ, बड़े आराम से यार। सैफ अली खान का भी मतलब चार्म देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि सैफ अली खान का भी बर्थडे है। एंड यू नो सैफ इज अ सैफ लाइफ। कोई भी रेस हो, हर रेस को जीतते हैं सैफ अली खान। फिर वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रहे या फिर एक्टिंग रहे या लुक चेंज रहे या फिर स्पोर्ट्स रहे या फिर पेरेंटिंग रहे, बहुत अच्छे फादर भी है सैफ अली खान। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

रश्मि, इट्स लाइक ये स्टारडम होना चाहिए कि हीरोइन के बारे में कोई बात ही ना करे. मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यू नो इमरान हाशमी का और हम सभी ने देखा है. तो मैं यही कह रहा था कि फिल्म आवर अपन 2 बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और वीकेंड पर दर्शकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है. एंड वायरल तो इतने सीन हो रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसा ना करो यार, प्लीज़ आवर अपन 2 के जो सीन है वायरल मत करो, कुछ ना कुछ तो रहने दो. एंड म्यूज़िक के बारे में अगर बात करें तो आवर अपन 2 का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बना है, गाने भी काफ़ी दर्शकों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं. एंजॉय करते हैं अगला ही गाना.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

रेडियो नायरा बनिर्वन नाइट्स एंड रणवीर सिंह का प्रलय। अरे टेंशन मत लीजिए, मूवी का नाम है। मैं यही कह रहा था कि रणवीर सिंह अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रलय की शूटिंग के सिलसिले में अब मुंबई में ही व्यस्त हो गए हैं। जय मेहता निर्देशन कर रहे हैं इस फिल्म का। बताया जा रहा है कि जॉम्बी से रिलेटेड ये फिल्म है एंड रणवीर सिंह का लुक एज यूजुअल यार कुछ ना कुछ तो अमेजिंग होने वाला है। रणवीर सिंह जितनी एनर्जी ना मैंने किसी एक्टर में देखी है आज तक। एनर्जी ऐसे रहती है कि फुल टाइम चार्ज रहते हैं एंड जिस तरह से उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाकई में इंस्पायर करने जैसा होता है। मतलब ही इज लाइक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड फिल्म प्रलय की शूटिंग वो जल्द से जल्द ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए सेट को तो मुंबई लगाया गया है ताकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाना बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए, एक वैकेशन तो बनती है यार। फिलहाल एंजॉय करते अगला ही गाना सुनते रहेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड आज की कहानी जो है वो दो दोस्तों की कहानी है। एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, एक का नाम सोहन था और दूसरे का नाम था मोहन। सोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, वो रोज़ सुबह उठकर खेत में काम करता था। मोहन थोड़ा आलसी था, वो हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत किए अमीर कैसे बनूँ। एक दिन दोनों दोस्त गांव के पास रहने वाले घने जंगल में लकड़ी काटने गए। चलते चलते वे जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे, है ना। वहां उन्होंने एक अजीब सा पेड़ देखा। उस पेड़ के पत्ते हरे नहीं बल्कि चमकते हुए सोने जैसे थे। मोहन की आंखें चमक उठी, उसने कहा, सोहन देखो ये सोने का पेड़ है, आज हम किस्मत वाले हैं, हम सारे सोने के पत्ते तोड़ लेते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं। सोहन ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, मोहन रुको, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, जंगल के जीवों का कहना है कि हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें जितनी लकड़ियों की ज़रूरत है यार उतनी ही।

रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं नई और फ्रेश कहानी। तो सोहन ने कहा कि यार जितनी लकड़ियों की हमें ज़रूरत है उतनी ही लकड़ियाँ लेनी चाहिए। मोहन नहीं माना, उसने सोहन की बात अनसुनी कर दी। मोहन ने जल्दी जल्दी सारी सोने के पत्ते नोच लिए, उसकी झोली सोने से भर गई, वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने सोहन को मूर्ख कहा और अकेला ही गाँव की तरफ भागने लगा। सोहन ने चैन से अपनी ज़रूरत की सूखी लकड़ियाँ उठाई और अपने रास्ते पर चल दिया। जैसे ही मोहन गांव की सीमा पर पहुंचा, उसके हाथ में रखे सोने के पत्ते अचानक साधारण सूखे पत्तों में बदल गए। मोहन घबरा गया, वो रोने लगा और वापस उसी जंगल की तरफ भागा। जंगल में पहुंचकर मोहन ने देखा कि वो जादुई पेड़ गायब हो चुका है। वह अंधेरा होने वाला था। अचानक कुछ जंगली जानवर उसकी तरफ आ गए। मोहन डर के मारे कांपने लगा और एक पेड़ पर चढ़कर मदद के लिए चिल्लाने लगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर एक नई कहानी, और जो मोहन है वो चिल्लाने लगा, पेड़ पर चढ़ गया और मदद मांगने लगा। गांव लौटते वक्त सोहन को जब मोहन नहीं दिखा तो उसे चिंता हुई। सोहन अपनी कुल्हाड़ी और एक मशाल लेकर वापस जंगल में आया। उसने अंधेरे में मोहन की आवाज़ सुनी। सोहन बिना डरे उस जगह पहुंचा, अपनी उसी मशाल से जंगली जानवरों को भगाया और मोहन को सुरक्षित नीचे उतारा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रोते हुए सोहन से कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और लालच किया। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। सोहन ने उसे गले लगाया और कहा, दोस्त मुसीबत के समय काम आते हैं, मेहनत से कमाया हुआ धन ही टिकता है, लालच से नहीं। इसके बाद दोनों हंसी खुशी गांव लौट आए। मोहन ने भी आलस और लालच जो है वो छोड़ दिया और सोहन के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। कहानी किसी की यही है कि लालच बुरी बला है और सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ निभाए। एंजॉय करते

Radio Marathon. It was on nights, and life was actually good when we used to sit on the floor and have our meals with our family. क्या दिन थे ना वो, मतलब सब लोग फ्लोर पे बैठते थे, उसके बाद बहुत सारे बर्तन में कहीं दाल सब्जियां चावल ये चीज़ें रहती थी, एंड फ्लोर पे बैठ के सारा कुछ बीच में रखते थे, राउंड करके बैठते थे. बचपन में 90s के की डिलीट कर पाएंगे, क्या दिन थे यार. आजकल मतलब ऐसा हो तो नीचे बैठ कर तो मोस्टली कोई खाना खाता नहीं है, डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना खाया जाता है. पर एक साथ खाने खाने का जो मज़ा था वो तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि बिजी स्केड्यूल है, लाइफ प्रैक्टिकल हो चुकी है. लेकिन आज भी अगर आपके फैमिली के साथ बैठकर आप खाना खा रहे हो तो काफ़ी लकी हो आप. मुझे तो बहुत अच्छा लगता था एक फ्लोर पर बैठ के खाना खाना, एंड यू नो लाइक वो दिन भी क्या दिन थे. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, एंड आपके साथ ये टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता. कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इसी शो पर. मिलता है कल. गुड नाइट, शब खैर.

0: yes, yes. Say it again.
1: Yeah.
2: 아, 순으로 해. 레디오 나라. 원스로 1.9 FM. 99.9 FM. SD4 1490 AM. 빡카데시 빡카로칼.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: भाई रखना।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: सारे गामा कारमा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

shows what I gotta say. Love is the message, eh?

0: स्वागत।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, हाँ? उन्हें दूध देना बंद कर दे।
2: सपने

0: स्मिता संदेश, लखनऊ जाने वाली ट्रेन, जिसमें छोटू सुन, तेनू बिस्मिता संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन, 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, उसमें लूटेगा
1: नहीं।
0: यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश।

0: इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस तिरंग दे।

0: बसंती
1: मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यार।
2: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन। सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: एक हो गए हम और तुम,
2: हम
1: तो उड़ गए निंदेरे।
3: रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉनवेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉनवेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

ಸುದ್ದ ರಹಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾರ 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

morning. Hello, hi, namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and All. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लोकल.

आप ने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Maurice Fuller, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसास, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांदा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांदा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट. पक्का देसी, पक्का लोकल.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूज एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लायर एट द ग्रासी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Freywork, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायगा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग इल्डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: I'm me on the mic, writing what I feel.
1: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स. वेल हमार ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है. कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द एमसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sports fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. Bazaane wala hai, miss mat kariye, zara enjoy kariye. Filhal ke jaiyega nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pata deegi.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Peach Glasses Peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye ghar hi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम 99.9 एफएम एचडी 34 तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल ट्यून्स एंड टॉक कहां धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Good morning, guys. Aani ke baad one more time. Welcome, Haji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट वीक 40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट वीक 40 स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक्स रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट वीक 40. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ज़िंदगी है क्या, एक सफ़र, एक कहानी, या फिर बस मंडे से फ्राइडे तक का स्ट्रगल और वीकेंड का इंतज़ार। शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है कि इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। हम सब अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं। किसी की कहानी में सक्सेस है, किसी की कहानी में स्ट्रगल, किसी के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं, किसी के पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं, कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो कोई बस ये सोच रहा है कि आज खाने में क्या बनेगा। और ऑनेस्टली, मैं यहाँ तक आते आते सोच रहा था आज का शो थोड़ा डीप रखेंगे, थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल। आप लोग रेडियो के सामने बैठकर सोचेंगे, वाह आज तो अर्पित ने ज़िंदगी बदल दी। लेकिन फिर मैंने सोचा, भाई इतना सीरियस होने की ज़रूरत भी क्या है, ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी सीरियस है। मॉर्गेज सीरियस है, क्रेडिट कार्ड के बिल सीरियस हैं, किड्स के स्कूल के ईमेल सीरियस हैं, और मंडे मॉर्निंग का नाम भाई वो तो पर्सनल अटैक है। तो चलिए आज हम ज़िंदगी को सॉल्व नहीं करते हैं, आज हम पर्पस ऑफ लाइफ नहीं ढूंढते हैं, आज हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स भी रिवील नहीं करेंगे, आज बस वही करेंगे जो हर हफ्ते करते हैं, बातें, थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की, कुछ पुरानी यादें, कुछ गाने, कुछ हंसी मजाक, और वो छोटी छोटी बातें जो शायद इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होती लेकिन बाद में याद रह जाती हैं ये बातें, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट्स, वो छोटी सी चाय, वो पुराना गाना, वो दोस्त का रैंडम फोन कॉल, और वो रोड ट्रिप में सुना हुआ कोई गाना हमारे साथ रह जाता है। और शायद इसलिए इधर उधर की बातें का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहानी कहाँ पहुँच जाए क्या पता, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। बस फ़र्क इतना है, ज़िंदगी में अगर बातचीत इधर उधर चली जाए तो लोग कहते हैं, भाई फोकस करो क्या बात कर रहे थे, और यहाँ इधर उधर तो भाई शो का नाम ही है। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, कार में हैं, घर पे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, या फिर चुपचाप हेडफोन्स लगाकर बैठे हैं, वेलकम कीजिए एक और शाम का, जहाँ कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस बातें हैं, थोड़ी पुरानी, थोड़ी नई, थोड़ी सीरियस, और मोस्टली बिल्कुल बेकार। लेकिन क्या करें, कभी कभी बेकार बातें ही तो सबसे अच्छी बातें होती हैं। मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ रुक जाती है।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम बैक। सॉरी, एक गाना एक्स्ट्रा चला दिया क्योंकि वैष्णवी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रही थी, तो उस चक्कर में एक गाना एक्स्ट्रा चलाना पड़ गया। बट एनीवेज, तो एज यूजुअल मुझे नहीं पता है आज के टॉपिक्स क्या हैं, बट एक रील देखी मुझे मेरी माँ ने मुझसे शेयर करी थी एंड आई थॉट कि मैं ये सुनाता हूँ। यस, वेरी फनी वीडियो है, एनिमेशन वीडियो है, तो क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लूँगा उस चीज का, बस मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जो एनिमेशन है उसमें क्या फनी था यार। तो ठीक है, ये बात है जो एनिमेशन है, मैं बस वो पढ़ के सुना रहा हूँ। कॉलेज टाइम की बात है, मेरा एक दोस्त था दीपांशु, उसकी लड़ाई हो गई दूसरे कॉलेज वालों से। शाम का टाइम था, मैं कॉलेज से आके सो रहा था तभी उसका फ़ोन आया कि भाई लड़ाई हो गई है, लड़की लेके आ जा। मैंने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा कि भाई अभी आना है क्या। उसने मुझे 3-4 गालियाँ दी जिससे मेरी नींद एकदम खुल गई। मैंने उठा, मैंने बाहर देखा, बाहर सूरज उग रहा था, एक्चुअली डूब रहा था, शाम का टाइम है राइट। ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियाँ बोल रही थी। मैं उठा, मैंने मुँह हाथ धोया, मॉइस्चराइज़र लगाया, नई जीन्स प्रेस होके आई थी वो पहनी मैंने। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, बोला मम्मी जा चाय बना दो। तभी दीपांशु का दोबारा कॉल आ गया कि भाई कहाँ तक पहुँचा है। मैंने कहा बगल वाले रूम में। उसने बस 5 ही मिनट हुए हैं और अभी चाय पी रहा हूँ, उसने मुझे गाली देने लगा, कह गया सारे पागल है क्या, इतनी देर में पिट जाऊँगा, ये लोग मेरी खाल उधेड़ देंगे, क्या कर रहा है भाई तू, चाय पीता रह जाएगा। मैं समझ गया कि दोस्त मुसीबत में है, ये ओकेशन चाय पीने का नहीं है। मैंने मम्मी को मना कर दिया, चाय मत बनाओ, कॉफ़ी बना दो। मम्मी कॉफ़ी बनाने लगी और मैं कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते पहनते मैं सोच रहा था कि मेरी बात क्या हुई है उससे। उसने बोला कि लड़के लेके आ जा। कौन से लड़के, कहाँ हैं ये लड़के भाई, उसके और मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ 2 ही जने हैं, मैं और वो, मैं उसका लड़का हूँ और वो मेरा लड़का है, अगर उसकी फटती है तो मुझे फ़ोन करता है, मेरी फटती है तो मैं सो जाता हूँ, तो कहाँ से लेके आएंगे ये लड़के। वो कॉलेज में होते हैं ना 2 लड़के जो साथ में खाना खा रहे होते हैं, साथ में घूम रहे होते हैं, साथ में हाथ पकड़े चल रहे होते हैं, साथ में बंक मार रहे होते हैं, लोग उसे लाइक पूरा कॉलेज उन्हें गे समझ रहा होता है, मैं वो दीपांशु। मैंने सोचा है फ़ोन करके पूछना चाहिए उससे, तो मैंने उसे फ़ोन करा कि कौन से लड़के लेके आने हैं। वो गिड़गड़ाने लगा, कहने लगा भाई क्या कर रहा है, कहीं से भी लड़के लेके आए ये मुझे मार डालेंगे, तू वो क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज कर दे। और उसने फ़ोन रख दिया। ये सुन के आई वाज सरप्राइज्ड कि क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी है और मैं उसमें हूँ नहीं, मुझे पता भी नहीं है। एनीवेज, तो उसके बाद मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने सबसे पहले सीआर को फ़ोन करा अपनी क्लास के कि भाई तू मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया, उसके अंदर मैंने मैसेज डाला कि भैया दीपांशु पिटने वाला है और हमें कैंडिडेट चाहिए जो उसे बचाने के लिए हमें चाहिए लेके जाने हैं। उनमें से 4 लोगों ने कहा कहाँ पिट रहा है, हम आके उसे पीटेंगे। एक ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, बता कहाँ पर आना है। ये सुन के मैं सकते में आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है खाना कहाँ पे। अब मेरी हिम्मत नहीं थी उसे फ़ोन करने के द्वारा कि मैं क्या पूछूंगा उससे कि भाई कहाँ आना है, लेकिन ज़रूरी भी है भाई, वो पिट जाएगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कि मैं उसे फ़ोन करूँ तभी उसका फ़ोन आ गया। उसका भाई, मैंने कहा भाई लड़के इकट्ठे हो गए हैं तू बस बता आना कहाँ पे। उसकी शक्ल में देख नहीं पाया लेकिन मुझे मालूम है वो बिल्कुल टूट गया था, उसकी आवाज़ बिल्कुल दब चुकी थी। वो कहता है यार जो कॉलेज के बाहर जो फ्लाई ओवर है ना उसकी दूसरी तरफ जो ढाबा है उससे 100 मीटर आगे जाके राइट साइड में, तभी फ़ोन छीन लेते हैं उसके जो पीटने वाले लोग होते हैं, कहते हैं भाई तू रहने दे तेरे से नहीं हो पाएगा, हम इसको माफ़ कर दे रहे हैं, 2.5 घंटे से मेडिटेशन करवा रहा है, हम भूल गए हम कौन है, हम भूल गए हमें आने का मकसद क्या था, ये कौन है, कर क्या रहा है भाई, छोड़ दे तुझसे नहीं हो पाएगा। एंड मैंने बहुत ही बकवास तरीके से बोला ये मुझे जानता हूँ, लेकिन यार मुझे बहुत फनी लगा था यार, ये जिस तरीके से एनिमेशन था ना, जिस तरीके से टाइमिंग थी, मुझे कहा भी गया था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूँ इस चीज़ को बोल के ख़राब ना करूँ, मुझे डायरेक्ट वो प्ले कर देना चाहिए था, बट मैं हूँ, मैं कहाँ सुनूंगा, मुझे उस कॉपी करने की चीज़ में भी ओरिजिनैलिटी लानी थी जो ला दी मैंने। एनीवेज, अगला सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए आई एम होपिंग। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो मुझे समहाउ मिस हो गया था, तो आई एम गोना प्ले इट अगेन फॉर यू गाइस। बाय बाय।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: आपको पता है, ऑफ कोर्स मैंने आने से पहले ही बता दिया था कि आज मैं शो के लिए टॉपिक सोच रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, हर चीज का टॉपिक होना जरूरी थोड़ी ना है। कभी कभी बस बैठना भी अलाउड होना चाहिए ना। जैसे हम बचपन में कितना कुछ नहीं करते थे, गर्मी की छुट्टियाँ हटाओ, वैसे भी पंखा चल रहा है उसको देख रहे हैं, पड़े पड़े टीवी पे कुछ भी चल रहा है, हम बस पड़े हुए हैं मेंढक की तरह। मम्मी चिल्ला रही है हमारी कान में जू नहीं देंगी, बस पड़े हुए। कोई गिल्ट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं है, बस कुछ नहीं है। आज अगर हम सोफे पे 20 मिनट बैठे रहते हैं तो दिमाग तुरंत बोलता है यार कुछ प्रोडक्टिव कर ले। प्रोडक्टिव भाई, मैं सोफे पर बैठा हूँ, GDP नहीं बढ़ा रहा हूँ। और शायद प्रॉब्लम यही है कि हमने हर खाली मोमेंट को भरना शुरू कर दिया। कार में फ़ोन, लिफ्ट में फ़ोन, लाइन में फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, सोने के बाद फ़ोन, उठने के बाद भी फ़ोन। और फिर हम कहते हैं यार पता नहीं टाइम कहाँ चला गया। टाइम गया नहीं भैया, हमने उसे खाली रहने ही नहीं दिया। कभी कभी कुछ नहीं करना भी जरूरी है। विंडो के बाहर देखो, चाय पियो, पुराने गाने सुनो और बस अपने थॉट्स के साथ बैठो। और हाँ, अपने थॉट के साथ बैठना थोड़ा रिस्की है क्योंकि दिमाग तुरंत 214 की वो एम्बेरसिंग कन्वर्सेशन याद दिला देता है जिसके बारे में आपको लगता है कि दुनिया भूल चुकी है। दिमाग वो नहीं भूला है वो सब बातें रिकॉर्ड करता है। लेकिन सीरियसली, शायद हर मूवमेंट को प्रोडक्टिव बनाना जरूरी नहीं है। कुछ यादें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं सिर्फ जीने के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इधर-उधर की बातें में मुझे हर बार कोई टॉपिक ढूंढने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। कभी भी टॉपिक होगा तो होगा, कभी होगी कोई कहानी, कभी कोई पुराना गाना और कभी कुछ भी नहीं। और शायद उसी कुछ भी नहीं से सबसे अच्छी बात निकल आए। तो आज थोड़ा स्लो हो जाइए, कुछ मत कीजिए, बस मेरे साथ रहिए और देखते रहें अगले टॉपिक क्या लेके आता हूँ। हो सकता है कुछ ना हो, मैं बस ब्लैंक स्टैटिक वॉइस चला दूँ

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM।
1: बचपन कितना मासूम होता है ना, कितना अच्छा होता है। एक कहानी है जो मेरे बड़े दिल के अजीज है, जो मैं अब समहाउ भूल गया, वरना एक साल के अंदर मैं बता चुका होता है कहानी। एनीवेज, ये कहानी है जब मैं था भी नहीं, उससे पहले की है, जो बस यू नो बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुनी है। तो हमारा जो घर बरेली में है, लाइक जैसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं, क्योंकि कुछ भी इवेंट्स होते हैं, दिवाली छोड़ो यार, तुम छोटे से त्यौहार है, कुछ भी है, पूरी गैदरिंग वहीं पे होती है, सब वहीं पे आते थे। एंड यू नो मोहल्ले में घर कैसे होते हैं, बीच में जो बरामदा होता है और उसके ऊपर जाल होता है, राइट, जिनको मालूम है जाल लोहे का बना होता है ताकि ऊपर से रोशनी भी आ सके, हवा भी आ सके, एंड देन ऊपर आप चल भी सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर वो जाल ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाए, गैप ज़्यादा है, तो पैर बहुत फंसता है। डूड मेरे पैर बहुत फंसे जब मैं छोटा था, बहुत पैर फंसता था मेरा, फिर रोता था, फिर आके निकलते थे, जाने क्या करते थे। एनीवेज, तो जो कहानी है, ऑफकोर्स मुझे इतनी बार सुनाई गई है, जो मैं खुद कहता था ये सुनाओ ना, वो वाली कहानी जो होता है ना, छोटे होते हैं तब कहते हैं वो वाली कहानी सुनाओ, तो मैंने समहाउ विजुलाइज कर रखा ये कैसे कहानी हुई होगी। ऑलराइट, तो कुछ होगा इवेंट, आई डोंट नो, बट घर में बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू स्टोरी, एक कंटेक्स्ट बताना जरूरी है। हमारे एक चाचा जी हैं एंड वो बहुत फेक हुए हैं, राइट, कुछ भी होगा, आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है तो कह रहे मैं करवा दूंगा यार, मैं वहाँ जुगाड़ है, ये है वो है, और अरे कल तो दिवाली है और हमारे तो जुआ होता है ना, बोनस लाइक खेलते ही हैं, शगुन माना जाता है हमारा जुआ खेलना दिवाली के बाद, तो जुए में खेलने गए वो भाई, वहाँ से 10,000 की चल रही थी और क्या जीता, फिर एकदम से मैं हारा और ये मेरी फ्लैश आ गई और वहाँ पे तीखौड़े आ गए, जाने क्या क्या, और बहुत फेंकू गजब अलग लेवल पे, सबको मालूम है बहुत फेंकते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, तो सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन सा मंथ है, लेट्स अज्यूम इंडिया के अंदर अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, तो मस्त अच्छी धूप चल रही है, मौसम बढ़िया है, और ये भी अज्यूम करते हैं कि स्कूल सब बंद है और कॉलेज भी बंद है और ऑफिस भी बंद है, तो सारे लोग आराम से ऊपर बैठे हुए हैं, दिस इज जस्ट टू सपोर्ट माई स्टोरी। तो एक खटिया जो होती है, चारपाई खटिया, तो वो है, और उस पे 15-20 लोग बैठे हुए हैं, लाइक मेरे भाई, मेरे कजन, मम्मी, चाची, ताई, सब लोग उस पे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कैसे बैठे हुए हैं, बट मुझे ऐसे ही सुनाया गया कि 15-20 लोग एक खटिया में किसी तरह घुसे पड़े हैं, और खटिया हैं घर में, गरीब नहीं है हम लोग, खटिया हैं घर पे, लेकिन नहीं, सबको वो फोमो हो जाता है ना, फोमो वहीं से स्टार्ट हुआ है कि मिस ना कर दें, जो फन इस खटिया पे हो रहा है दूसरी खटिया पे नहीं हुआ, तो सारे इसी खटिया में घुसे पड़े हैं और सारे बात कर रहे हैं, कर रहे कर रहे हैं, फिर एकदम से बात निकल के आई है चाचा जी की, और सारे बोल रहे हैं अरे उसने मुझे ऐसे करा कितना फेक हुआ, दूसरा बता रहा है उसने मुझे ऐसे बताया करा कितना फेक हुआ, सारी उनकी बुराइयां कर आ रहे हैं, सब हंसे आ रहे हैं, हंसे आ रहे हैं। राइट, अब उस ग्रुप के अंदर जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे मेरी एक कज़न दीदी भी हैं, जो उस टाइम पे 4 छोटी थी, अभी तो मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो मैं तो था ही नहीं ना, ऑफकोर्स बड़ी मासूम सी जो होती है ना, बड़ी मेरी फेवरेट दीदी हैं वो। उन्होंने देखा कि नीचे से ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से चाचा जी आ रहे हैं, अब वो इतनी मेरी मासूम है दीदी, वो कर रही हैं चाचा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, ताकि बाकी जो हमारा झुंड पीछे बैठा हुआ है उसी चारपाई पे वो सुन ले और देख ले, बट झुंड का फर्क कहाँ पड़ रहा है, वो तो बुराइयों में लगे पड़े हैं और वो मेरी दीदी करे जा रही है चाचा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, ताकि कोई तो सुन ले। उन्होंने 15-20 बार चाचा जी नमस्ते कर दिया, किसी ने नहीं सुना, और शायद किसी की नजर गई होगी अरे ये तो यहाँ आ गया, एकदम से जो वो होता है ना दल बदल देते हैं, अरे आओ आओ यार तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, ये वो सबने उन्हें बैठाया, ये वो है, ऑफकोर्स सुन तो लिया होगा क्योंकि जिस तरह से मेरे घर वाले हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो मोहल्ले को क्या दूसरा जो जिला होता है उस तक को सुनाई देता है, तो सुन तो लिया हुआ उन्होंने, बट सबने बाद में दीदी की ऐसी डांट लगी, जब तू दिख गया था तो तूने बोला क्यों नहीं, तो कह रही बोल तो नहीं थी चाचा जी नमस्ते किसे सुना ही नहीं। तो क्या मासूमियत होती है ना यार उस टाइम पे, मुझे जस्ट इमेजिनेशन ना, लाइक मैं अगर विजुलाइज करता हूँ ये स्टोरी कैसी हुई होगी यार, मुझे बहुत सही लगती है, फनी से ज्यादा मुझे मासूमियत दिखती है इसके अंदर की, यार क्या सर टच ऑफ दैट मासूमियत है इस कहानी के अंदर। अगर आपके पास भी है और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज फोन करिए, बताइए अपने जीवन के ऐसे किस्से, ताकि जो है बाद में 1-2 साल बाद अपना किस्सा बना के दूसरे लोगों को सुना सकूं। नंबर 9199998595।

0: कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है? जी हाँ, यूजलेस। ऐसा टैलेंट जिसका लाइफ में कोई फायदा ही नहीं है, करियर में तो कोई यूज ही नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलते उसके, लेकिन फिर भी आपको उस टैलेंट पे थोड़ा सा गर्व है। जैसे मेरा एक यूजलेस टैलेंट है, जैसे मुझे लगता है कि मैं किसी भी पुराने गाने, स्पेशली 90s के कोई भी गाने जो मैंने सुन रखे हैं, वो मैं विद इन मिली सेकेंड्स में उनकी ट्यून सुन के पहचान लेता हूँ। गाना शुरू भी नहीं होता है, बस म्यूजिक टन टन टन, और मैं यस ये गाना 98 का है, और सामने वाला बोलता है भाई किसी ने पूछा क्या? नहीं, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। किसी को क्रिकेट के स्टैट्स याद रहते हैं, किसी को मूवीज के डायलॉग, और किसी को हर सेलिब्रिटी की शादी की डेट, और किसी को पता होता है ये फ्रिज में रखी चीज एग्जैक्टली किस शेल्फ पे रखी है। चलो वो तो ध्यान आती है, काम में आती है रात के टाइम पे, बट यूजफुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन टैलेंट टैलेंट है, और शायद हम सबके पास ऐसा कोई ना कोई बकवास यूजलेस टैलेंट होता है। कोई बिना देखे बता सकता है कौन सी कार आ रही है, कोई बिना सॉन्ग की लिरिक्स याद रखता है, कोई अपना वाईफाई पासवर्ड याद रखता है लेकिन गाने के बोल याद रहते हैं, कोई 20 साल पुरानी बात वर्ड टू वर्ड याद रखता है लेकिन कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता है। और सबसे डेंजरस टैलेंट, किसी आर्ग्यूमेंट का 6 घंटे बाद परफेक्ट जवाब दिमाग में आना, और उस वक्त नहीं आना 6 घंटे बाद, और बाथरूम में शॉवर के नीचे, अरे यार मुझे ये बोलना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए आपका सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है? ऐसा टैलेंट जिसके लिए दुनिया ने कभी मेडल नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है भाई ये टैलेंट होता नहीं हर किसी के लिए। मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर की बातें। चलिए देखते हैं आज के शो में सबसे यूजलेस टैलेंट किसके पास है। नंबर है 9199998595।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients. Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: राइट, मैं कैसे भूल गया। तो बर्थडे में केक से पहले आपको पेस्ट्री भी मिलती थी, पेस्ट्री मिल रही है, पैटीज मिल रही है, यार क्या कॉम्बिनेशन होता था। वो पैटीज याद है, वो खाने में कितना चूर चूर करती थी, पूरा आपका प्लेट गंदा, फिर आप देख रहे हो, अगर आपका क्रश आसपास नहीं है तो आप सेफ हो, वरना आप कह रहे हो खा ही नहीं रहे हो पैटीज की, कौन खाए, कौन जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा उसके आगे, क्रश से मिलना पॉसिबल नहीं होगा। हाय क्या दिन होते थे यार। उसके बाद आप गिफ्ट के अंदर, अरे यस, फिर आप थोड़े बड़े हुए, राइट, यू नो टीनेज टाइप के आ गए आप, तो आपको पता चला कि बॉस बर्थडे में ऐसे ही नहीं आ सकते, मम्मी ने दे दिया पेंसिल बॉक्स और उसको आप लपेट के ले गए। हर चीज है, हॉल मार्क्स है, यू नो कार्ड वार्ड वहाँ जाके गिफ्ट विफ्ट लेने पड़ते हैं, क्या फैंसी जगह होती थी यार। एक तो उसके अंदर आप एंटर करो उनके स्टोर पे, उस टाइम पे अभी भी आई एम श्योर ऐसे हुआ, ठंडी हवा, क्योंकि एसी हर जगह नहीं होता था परचूने की दुकान पे, बट वो तो फ्रेंचाइजी है, वो तो एस्टेब्लिश्ड है, यू नो मस्त ठंडी हवा आ रही है, खुशबू है, और बिल्कुल एकदम उसने ऐसे बना के रखा हुआ है, वो याद है गाना आंखों में तेरा ही चेहरा, बिल्कुल वो वाले गाने बज रहे हैं उसके अंदर, अरे क्या मजा आता था। हर चीज और क्या नाम बोला, हॉलमार्क्स, अरे क्या स्टैंडर्ड होते थे यार, मजा आता था। आपकी ऐसी कौन सी कहानी है, आपको क्या लगता है कि क्या फन था बर्थडे के अंदर, वो गिफ्ट्स मिलना, चाहे वो इतने फैंसी रिटर्न गिफ्ट नहीं होते थे, आपको मिलता था वही पेंसिल बॉक्स या रबड़ की, एक खुशबू वाला रबड़ मिल गया, बट मजा आता था यार जो भी मिलता था। फोन करें बताइए ना, नंबर है 919-999-8595।
1: अनकान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM।
2: वेल, आप बचपन में बोर होते थे? जी हाँ, बिल्कुल भयानक, बे इंतहा बोर। वेल, मुझे लगता है 90s में ना बोर होने का भी अपना एक मज़ा था। दोपहर का टाइम है, बाहर धूप, घनी धूप है, घर में सब सो रहे हैं, टीवी पर कुछ खास नहीं आ रहा, किसी दर्शन आ रहा है, और आप बेड पर उल्टे बस लेट के सीलिंग फैन को देख रहे हैं। बस कुछ हो नहीं रहा है, आपको पता भी नहीं है कब क्या आपका सीलिंग फैन के जो ब्लेड है घूमते घूमते एक स्पेसशिप बन जाते हैं और आप एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं। फिर सडनली आप मार्स भी लैंड कर चुके हैं, कैप्टन व्योम बन चुके हैं, अंतरिक्ष को बचाने जा रहे हैं। तभी मम्मी की आवाज़ आती है, सोए नहीं अभी तक? बट आपकी तो स्पेस जर्नी ख़त्म ही नहीं हुई है। 90s में जो बोर्डम था ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते थे। इनफैक्ट 90s के, मुझे लगता है अभी भी अगर आप बोर हो रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, आपको खुद डिसाइड करना होता है कि अब क्या करें। कभी अखबार उठाया, स्पोर्ट पेज पढ़ा, फिर वही न्यूज़पेपर एक क्रिकेट बैट बन जाता था। कभी कोई पुराना कार्डबोर्ड मिल गया तो वो घर बन जाता था, दो कुशन रखे तो वो किला बन गया, और उस पर अगर बेडशीट डाल दी तो भैया समझ लो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो चुका है। और सबसे फनी बात, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इमेजिनेशन कैसे करना है, वो हम खुद सीख लेते हैं, वही हमारा टीचर है। जो बोरियत है वो हमें खुद सिखा रही है। गर्मी की छुट्टियों में तो बोरियत का अलग ही लेवल होता था। दोपहर के 2 बजे बाहर जाना अलाउड नहीं है, मम्मी बोलती है सब सो रहे हैं तुम भी सो जाओ, कुछ नहीं करना है, टीवी नहीं चलाना है, चुपचाप बैठो, कोई टिक टिक टिक नहीं करनी है। तो आप चुपचाप बालकनी में चले जाते थे, नीचे रोड को देखते थे, कभी दूर दराज से कहीं साइकिल पे कोई जा रहा होता था, रिक्शा जा रही है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई आइसक्रीम वाला आ गया, तो आप उसकी बैल सुनते ही सडनली जिंदा हो जाते थे। फिर इमेजिनेशन चलती थी कि पता नहीं कौन सा फ्लेवर होगा, फिर याद होता अरे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए। कभी कभी ना बोरियत पुरानी मैगजीन में मिल जाती थी, जैसे फिल्म फेयर, इंडिया टुडे, क्रिकेट मैगजीन, ग्रैश ओवर, सरसरी, और फिर उनके एक्ट्रेस के फोटोज कट करके नोटबुक में चिपका देते थे। वो नोटबुक क्या थी, जैसे हाँ स्क्रैप बुक, और स्क्रैप बुक में आधी दुनिया रहती थी। और कभी कभी बोरियत का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना भी नहीं था, बोरियत का मतलब था कुछ इन्वेंट करना, एक गेम जिसके रूल्स आपने बनाए हैं, और अगर आप हारने लगे तो रूल्स भी अपने आप ही चेंज हो जाते थे कि ये आउट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल रूल है। स्पेशल कब बना? अभी बना। और फिर गेम चलता रहता था। मुझे लगता है कि 90s की जो बोरियत थी ना, एक खाली रूम जैसा था, रूम खाली था इसलिए हमने उसमें अपनी दुनिया भर दी, कुछ कहानियाँ, कुछ खेल, कुछ सपने, कुछ अजीब से आइडिया और बहुत सारी इमेजिनेशन। कभी कभी तो बस खिड़की के बाहर देखते रहने से ही पता नहीं दिमाग में कितनी फिल्में चल जाती थी। हीरो हम, डायरेक्टर हम, प्रोड्यूसर भी हम, और बजट जीरो, लेकिन इमेजिनेशन अनलिमिटेड। और शायद इसीलिए 90s की बोरियत की याद भी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ नहीं करना नहीं था, वो एक ऐसा वक्त था जहां आपको कुछ करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा समय, थोड़ी सी उत्सुकता और थोड़ी सी बोरियत, और फिर किसी दोस्त की आवाज, ओए नीचा, अब बस बोरियत खत्म, कहानी शुरू।

0: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
1: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
0: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
1: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
0: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
1: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
0: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
1: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
0: Or visit brown-immigration.com.
1: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.
2: Healthy living means Indian tradition. Sunte rahiye healthy rehne ki musical parampara. Only on Radio Naira.
3: Well, पता है क्या मुझे बहुत ज़्यादा fascinate करता है. उस वक्त नहीं करता था, बट मैं सोचता हूँ दोबारा तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों को लगता होगा. या जब हम घर पे जब थे वहाँ पे 90s में अपने घरों में इंडिया में, तो हम कहीं जाते थे तो हम यूजली क्या 99% हम फ़ोन करके नहीं जाते थे, हम बस चले जाते थे, टपक पड़ते थे. वो जो सरप्राइज एलिमेंट होता था ना, क्या सही लगता था यार. मुझे वो चीज़ बहुत मैं मिस करता हूँ यहाँ पे. यहाँ पे एक दो तीन बार हुआ है मेरे साथ, एक दो तीन बार हुआ हो कोई लिमिट ही नहीं है, एक दो तीन. वेल, मेरे साथ हुआ है कई लाइक दो तीन बार. एक हटा देता हूँ मैं, थोड़ा थीम में रहेगा. तो दो तीन बार हुआ है कि जब रैंडमली बिना बताए मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया, एंड आई वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड, लाइक यू नो, अरे यार ये तो फीलिंग ही अलग है. यू नो, अगर कोई बता के आ रहा है तो आप सब कुछ सफाइयाँ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, वो आधा घंटा लेट आ रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या बकवास है यार, इंडिया के लोग सुधरते नहीं है, कोई टाइम से नहीं आता है. बट जब वो सरप्राइज एलिमेंट होता है ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ. और सबसे अच्छा लाइक इंडिया में क्या होता था, इनफैक्ट अगर चलो किसी ने बता दिया कि कोई दूर से आ रहा है, लैसे आपके दूर से दूसरे शहर से कोई आपके मामा मामी या ताई जी ताऊ जी आ रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले बताना पड़ेगा भाई हम आ रहे हैं, तो आ गए. तो उसमें क्या होता है, तो मम्मी की तो पूरी लिस्ट बन जाती है, राइट. यू नो, ड्राइंग रूम के कवर शीट बदलो, सोफे के टेबल साफ करो, अखबार यहाँ से हटा के रखो, चप्पलें वहाँ करो, और हमें डांट पड़ी होगी तुम तरीके से रहना. अब ये लाइक हमने क्या करा है, हम बस मिट्टी में तो खेल रहे हैं, कपड़े तो सने हुए हमारे, मुंह तो गंदा है, बाल में जुए, हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए. लेकिन हाँ, ये सब होना शुरू हो जाता है, पूरे घर की सफाई, महाअभियान शुरू हो जाता है, और फिर वो पूरी मम्मी की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि खाने में क्या बनेगा, चाय में क्या बनेगा. वो क्रॉकरी सेट निकल के आता है जो हर घर में फेमस होता है ना, यू नो, साल में जो एक बार निकल के आता है ना, शो पीस में क्या कहते हैं उसे, यह दीवार पे कुछ होता है ना जहाँ पे हम सारे शो पीसेस रखते हैं. एनीवेज, वहाँ पे जो रखे होते हैं अच्छे से क्रॉकरी सेट, बस आप देख रहे होते हैं भाई कब यूज होगा, ये कब निकलेगा, वो निकलता है साल में एक बार. और अगर गर्मियाँ हैं और अगर वो सीजन आ चुका है जहाँ पे आपकी कोल्डिंग होती है, तो आपको दे दिया जाता है कि जाओ कोल्डिंग लेके आओ. याद है वो एक डेढ़ लीटर वाली कोक चलती थी, पेप्सी चलती थी, कोक तो नहीं थी उस टाइम पे, वो डेढ़ लीटर की कांची बॉटल में 45 रुपये या 30 रुपये की आती थी, वो लेके आते थे. और मम्मी निकालती थी स्पेशल बिस्किट का पैकेट और मिठाइयाँ, और मेरे केस के अंदर होता था मम्मी मिठाई का डब्बा खोलती थी, उसमें सिर्फ रैपर मिलते थे, मिठाइयाँ नहीं मिलती थी. मेरे में अंदर एक खूबी थी, मैं ऐसा था कि अगर मैं मिठाई छुपचाप के खा रहा हूँ तो मैं प्रूफ छोड़ के आता था, मैं नहीं चाहता था कि किसी को लगे कि कौन खा के जा रहा है, तो मैं रैपर मिठाई के डिब्बे में ही छोड़ देता था. तो कितनी बार अनगिनत बार हुआ कि मिठाई के डिब्बे खोले कि दूसरे को सर्व करें या पापा को सर्व करें, और बस उसके अंदर रैपर ही मिलते थे, मिठाई कहीं नहीं मिलती थी. ये मेरा सिग्नेचर था, सिग्नेचर स्टाइल. एनीवेज, तो वो बिस्किट निकलते थे स्पेशल और पता नहीं क्या क्या, और हमें बता दिया जाता था कि भाई तुम लोगों को छूना नहीं है वो, और हमारी नज़र वहीं पे होती थी, ये जो स्पेशल बना है हमें यही तो खाना है, बाकी चाहे कहीं और, वो हमें मतलब नहीं पता ये क्यों छुपा के रखा जा रहा है, ये क्यों मना कर जा रहा है. हमें वो एक क्या होता है, क्रांति वो कारी टाइप की अंदर हमारी वो होती थी प्रवृत्ति कि जो मना करा गया है वही हमें करना है, राइट. फिर मेहमान आते थे, बातें बातें करते थे कि अरे भाई बड़े दिन हो गए, मोटे हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो, हमसे नहीं कहते थे, पापा से कहते थे. हम कहाँ, हम तो भाई दुबले पतले हैं, मिट्टी में सने हुए, किसी को दिख भी नहीं रहा कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ पे है। एनीवेज, लेकिन हाँ वो बातें कर रहे होते हैं कि भाई हाँ उसकी शादी होने वाली है, उसका लड़का नालायक निकल गया, शर्मा जी का लड़का ने आईएएस निकाल लिया, ये सब बातें कर रहे होते हैं, हम अपने घर रहे होते हैं, कंचों से खेल रहे होते हैं। फिर हम वेट करते हैं मेहमान जाने कब वाला है, और जब जा रहा होता है तो अगर इतनी रिलेशन, आई डोंट नो, डिपेंडिंग करता है, अच्छी पता नहीं, मैं कभी फैक्टर नहीं कर पाया किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो कई बार वो पैसे देके जाते हैं और यू लाइक ये पैसे मिलेंगे पैसे, जिसके अंदर वो पैसे आपका जीएसटी वीएसटी काट के मम्मी अपने पास रख लेती है, अभी तुम बड़े होगे तब रखेंगे, तुम्हारी गुल्लक में जा रहा है। वो गुल्लक जो कभी मिलती नहीं है, हमने देखी भी नहीं है, बस सुना है कि गुल्लक है। मैंने एस्टिमेट लगाया था कि जितने मुझे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था जब से मुझे कल आई कि बहुत से पैसे मिल रहे हैं, ये मुझे बाद में मिल सकते हैं, तो मैं तो लिखना शुरू करा कि कई बार मुझे ज़्यादा पैसे भी मिले, तो मेरे पास कॉल स्कूल तो ख़त्म होते होते तक मेरे पास 1,500-2,000 रुपये होने चाहिए थे, जो मुझे पता नहीं बाद में दिए होंगे मम्मी अपने, लेकिन हाँ अपने ऐसे ही दिए होंगे। बट हाँ ये सब कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी। बाय द वे गुल्लक से याद आया, आपने वो वेब सीरीज देखी है गुल्लक? आई डोंट नो किस पे है, बट देखिए बड़ी अच्छी है यार, इट्स वेरी नाइस, मज़ेदार है। प्रमोट नहीं कर रहा बट नाम आया गुल्लक का तो मुझे याद आ गया। कुछ तो वेब सीरीज हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, तो देखिएगा जरूर। बढ़ते अगले गाने की तरफ।

तो दोस्तों पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए। थोड़ी बातें हुई, थोड़ी यादें ताजा हुई, कुछ पुराने गाने सुने और थोड़ा सा वक्त हमने उन्हीं पुरानी गलियों में बिता दिया। शायद इसीलिए मुझे लगता है यादें भी ना अजीब चीज होती हैं। हम उन्हें बुलाते नहीं हैं, बस कोई पुराना गाना बजता है, किसी पुरानी स्मेल का एहसास होता है या कोई छोटी सी बात होती है और अचानक हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। वही स्कूल, वही दोस्त, वही घर, वही शाम, और कुछ देर के लिए लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया था, लेकिन फिर गाना खत्म होता है और हम वापस आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अर्पित आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी यादें कहीं नहीं जाती, वो बस चुपचाप अंदर बैठी रहती हैं और कभी किसी गाने के साथ वापस आ जाती हैं। तो अपने उन यादों को संभाल कर रखिए और कभी वक्त मिले तो उन्हें दोबारा याद कीजिए, शायद एक छोटी सी मुस्कुराहट मिल जाए। मैं हूँ अर्पित फिर से, और ये था इधर उधर की बातें। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर, कुछ पुरानी यादें लेकर और शायद थोड़ा इधर उधर। तब तक खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए और हाँ, यादों को डिलीट मत कीजिए। शुभ रात्रि।

हेलो हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नारापुर निर्वाणा नाइट्स एंड माउस, आपके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। नॉर्थ कैरोलिना के ट्राइंगल क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए आज मौसम विभाग की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी वेदर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पूरे क्षेत्र में सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक एक गंभीर हीट एडवाइजरी लागू रहेगी। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी आपको बरतनी है एंड आपको पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी है, हाइड्रेटेड रहना है, कॉटन के कपड़े आपको पहनने हैं एंड यू नो जो मौसम है उसके हिसाब से जंक फूड अगर आप अवॉइड करते हैं खाने का तो ये काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। एंजॉय करते हैं इस प्यार भरी शाम का ये पहला गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल। और एक बात, मुस्कुरा रहे हो ना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती है। सुनते हैं अगला एक गाना।

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स में हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आज पराग, सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। हमारे रैली शहर के विकास और यहाँ के लोकल प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। साउथ ईस्ट रैली के एक बहुत ही बड़े इलाके में बनाए जाने वाले एक विशाल डेटा सेंटर के पूरे प्रोजेक्ट और उसके प्रपोजल को अचानक से पूरी तरह वापस ले लिया गया है। इस बड़े फैसले में अचानक सामने आने के बाद पूरी आरटीपी ट्रायंगल क्षेत्र में रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हलचल और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। जी हाँ, इस पूरे मामले पर खुद रैली शहर के माननीय मेयर जेनेल कोवेल ने आगे आकर मीडिया के सामने बात की एंड इन्होंने आधिकारिक और पक्की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि बड़ी डेवलपर कंपनी बीकन पार्टनर्स ने जॉन्स सोजेस रोड और रॉक क्वेरी रोड के मुख्य चौराहे के पास करीब करीब जो बड़ी फैसिलिटीज़ और आलीशान बिल्डिंग बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था उसे अब उन्होंने पूरी तरह से बंद करने का मन बना लिया है। एंजॉय करते हैं।

अपने एंजॉय किया ये गाना गाना था वाकई में बेहतरीन एंड गाने ने सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। इस पूरे मामले में खुद रैली शहर के माननीय मेयर ने आगे बढ़कर बात की है, तो ये बात की पुष्टि तो हो गई है कि प्रोजेक्ट जो है वो बंद किया जा रहा है। हमारे वेक काउंटी के कमिश्नर्स कल यानी गुरुवार के दिन एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट पब्लिक हियरिंग यानी आम जनता की बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें वेकमेड और एट्रियम हेल्थ नाम की दो बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों के बीच होने वाले विशाल मर्जर और समझौते को लेकर आम जनता और लोकल लोगों की राय और उनके सुझावों के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और इस पूरी बड़ी डील पर पिछले मई महीने से चल रही कड़ी सरकारी जांच के बाद ये पहला मौका होगा जब इस बातचीत और फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या होगा इस मीटिंग में, मैं ज़रूर आप सभी को बताऊँगा। तब

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिजाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। नाइटेल और उसके आसपास के रास्तों से रोजाना अपनी गाड़ियों से दफ्तर और काम पर आने जाने वाले सभी यात्रियों और ड्राइवरों के लिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी और काम का ट्रैफिक अपडेट जो है वो जारी किया गया है, जिसके अनुसार आज यानी बुधवार के दिन से कैरोलियन एवेन्यू पर बने नाइटेल बुलेवार्ड की एक बहुत ही मुख्य और चालू सड़क की लेन को गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से ब्लॉक यानी बंद कर दिया है। आपको अल्टरनेट वे ढूंढना है, मैप पे चेक करना है कि आप किस वे से जा सकते हैं, एंड उसके बाद ही आपको निकलना है, ताकि अर्जेंट काम आपको अगर रहे और रास्ता बंद हो जाता है तो आपका टाइम वेस्ट होने की संभावना है। इसलिए पहले चेक कर ले, बाद में विश्वास करें, एंजॉय कर ले।

रेडियो मेरा 91.9 जरम काउंटी और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रही फूड क्राइसिस यानी भूखमरी और राशन की भारी किल्लत की समस्या से हमेशा के लिए निपटने के लिए आज प्रशासन ने और कुछ एनजीओज ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े हंगर सॉल्यूशन सेंटर का ओपनिंग किया गया है, ताकि समाज से सबसे गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद परिवारों तक आसानी से हर दिन मुफ्त में भोजन पहुंचाया जा सके। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट है जिसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज जाके ये चीज़ें सफल हो चुकी है। मतलब किसी बेसहारा लोगों को खाना खिलाना एंड उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सबसे बड़ा अच्छा काम जो है वो होने जा रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। एंड कैसे

WCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490